0: 105.4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.
1: कोई शिकवा ना करेंगे ना आजमाएंगे, तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे, हम तुम्हारी वफा की दुनिया में प्यार ही प्यार लुटाएंगे।